सातोरे भाईडोरी अमाहे कबे नड़ेती आलेगी क्यों धरूडे क्यों परनाई रे अमा मिनो दिवे क्यों नी गाडे किरो भाड़े यो धरूडे क्यों परनाई ओ अमा मिनो देवे क्यों निकाद कीरो बाड़े यो अरे पगेरे।